0: देव, तुम्हें पता है परसों हम दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी है, तुम्हारी और मेरी। तो मैंने सोचा कि इस बार उन दोनों के लिए कुछ स्पेशल करते हैं। तुम्हें क्या लगता है?
1: दोनों को छोड़ देते हैं, काफी स्पेशल रहेगा।
0: कम ऑन देव।
1: माया, तुम जैसा चाहोगी वैसा करेंगे। छोड़ दे।